रमाइलो संसार नि म बुझेर नि म इमानदार नि म भन्न जति गर्न सक्छु तरवार नि म सेक्युर बॉडी ऑन द फ्लोर यो रातको जिम्मेवार म जमाना क्या से

0: धेरै धन्यवाद टु माई हस्बेन्ड एज वेल काई वाइजे टु एभ्रीबडी हु एक्चुअली ब्रट अस हियर अन द स्टेज एन्ड सो वन्डरफुल टु हैव यू हियर
1: एन्ड दिस इज फर यू एज अ सुभनियर थैंक यू
2: Well, awesome mahol tatidai cha. Radio Kantipur presents Radio Kantipur National Music Awards 2082 go. And moving on.
3: Aba ko lagi arko ra category. Tyo pani tapai haru ko pratiksha ko athwa pratikshit hun sakcha. Aba ko category raheko cha Best Adhunik Singer Female. Top 5 nomination ma parne haru ko ko hununcha ta? Hero.
4: Extreme Energy Drink presents Radio Kantipur National Music Awards 2082. Title sponsor Extreme Energy Drink.
5: Powered by Proton EMAS.
4: In association with Honda.
5: Co-powered by Hulas Steel.
4: Kajaria Tiles. Best Singer Adhunik Female.
5: Utkrishta Adhunik Gayika.
4: माया का गीत रेशमा

Good evening, everybody. म फटाफट घोषणा गरिहाल्छु है. बेस्ट मेल सिङ्गर अवार्ड गोज टु शिव परियार.